0: 这批的，这批的，这批的姐，七月应不，这个最来给下。可是，第一空格里真的人多点一点呢，俺俩最大最的，这家来给呀，人可多。
1: 是，麻将是你们贵，这不就是打足够有给？嗯。要求下，你家俺最这边来个的多，我那边让穷多。
2: 这边这批的给，让俺头上去要嘛是？可是我们的给不到哪去呢？
1: རང ཐང དེ ཅུང དེ དེ ཐོག མ རེ
3: ཅོ ཕི དང ཡ ཆོ ཁྱི རང ཡི ལ ཡ སིན དང དེ སུ སུ ག ལ གེ བེ ཅེ བུར དང
4: ཧ
3: ཁྱི རང ཡི གེ རིག པུ དོས ཅིམ ཅེ ཅི ཡོ ད ཟེ དེ ཡ ཐོར དོས དོན དང ཅབ ཅུ ལང ཨམ ཅམ ཅོག དུ ལི ཟེ དེ དེ དོས དེན གུ གི དེ ནེ དེ གེབ ཚོང དང གེ ཤེ ཅི ཡོ ཉེ དེ རང ལ པར གེ ཁ ཤེ གུ རེ ཤེ ཡོ ཟ ཉི ཁུ ཟེ མ ཤེ ལ ཧ
4: ཉི ཧ ཡ ཤ དང ཨ སན ཅེ ཟ ཤ ओ दादाजी चोपीदो जो सुसिंग के जेदो आ यामेनिंग ए दुसु सेजे जोल दासगा चिंगा
3: जिए जिरानी कदु जोवा याओ दिन्दे शाप्से
4: आ दिजे माशी जो सुसिंग के आ न्याम न्यूमा को न्याम चु सेजो जेजा आ सिरप चीगे दात सेओ जबा
3: जिए सुसु ले याओ चे 고급체디
5: 쇼. 교칼아서 쇼. 차돌서다. 야.
4: 조수진.
6: 하이.
4: 야, 메소 조랑 제이. 마스 차기 용쇼.
6: 야치.
5: 녀령고. 파지.
6: 야치. 라마드. 되다.
4: 메. 다체 중요이. 很多把亚马逊小鱼 推出中沙大概用笔
6: 我公司买点学人家 我是穷多啊
4: 特别是民族 这两年长 公司用不上你活着吧 中下的雷米古典鱼长 特别是给民族 就是信 这两个洋西亚让我民族在的 当然心里清楚
6: Ji, gyuri mbush nyesu daya mchung, kukab dida du nyesu ya wush kemye yi. Di chawa sangu chi resi chiya chow ri, ine ran kata chiga inda. Kukab dida du geja chwebchi, shimbo da nga gongsa lo li du ran kukab mep chiga urda.
4: Denshi ma longda, nga chua ranta duriya kapa yoshi, gyos menga nyan tunshula, nga chua ranta nyan lopchu mangu xeo yu. Da chabri xia, jo bidega nga chabra gu daya yoshi, kiran zu kala lulu chaso xi.
6: Yua.
7: 这事情快跟主席把你们话是公司国家的家长是吧看那场吧用手的主播
8: 저 수신
7: 막 교우신